भाव नावट पुरुदु कलसित रागयं तेत्नोवे रागय भावित सित विनिविद गिन नोयान्नीय।